ஸ்ரீ கணேசாய நமஹ. அஸ்மத் குருப்யோ நமஹ. அஸ்மத் பரம் குருப்யோ நமஹ. ஸ்ரீமதி ராமானுஜாய நமஹ. ஓம் த்யாய நித்யம் மகேஷம் ரஜதகிரி நிபம் சாரு சந்திராவதம் சம் ரத்னாகல்பஜலங்கம் பரஸ்மிருகவராபீதியஸ்தம் பிரசன்னம் பதமாசீனம் சமந்தாத் ஸ்ருதமவிரகணேர்வ்யாக்ரகிருத்திம் வசானம் விஸ்வாத்யம் விஷவந்த்யம் நிகிலவயஹரம் பஞ்சவக்த்ரம் த்ரிநேத்ரம் प्रातःकालीन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम ज्योतिष वास्तुमा. कार्यक्रम ज्योतिष वास्तु लिएर सधैँ आज पनि उपस्थित भइसकेका छु म ज्योतिष आचार्य पण्डित प्रेम प्रसाद सुवेदी. कार्यक्रम ज्योतिष वास्तुमा हामीले जानकारी दिइसकेका छौं आजका तिथि मिति पञ्चाङ्ग मेषादी बाह्र राशिफल. राशिफलपछि हामीले तपाईँको भूत वर्तमान र भविष्यको विषयमा पनि जानकारी भने दिने गरेका छौं. पारिवारिक समस्या, वैदेशिक यात्रा, श्रीमान श्रीमतीको दाम्पत्य जीवन, निसन्तानपन सम्बन्धीका समस्या, कालसर्प योगका समस्या, मांगलिक योगका समस्या, पितृदोषका समस्याहरू के कस्तो रहन्छ, भूत वर्तमान र भविष्यको विषयमा, ग्रह दशा र भाग्यको विषयमा जानकारीका लागि 9841-75-223 र 9806-75-223 नम्बरमा तपाईँले आफ्नो र आफन्तको विषयमा, ग्रह दशा अनि भाग्यको विषयमा विशेष रूपमा जानकारी भनी हामी तपाईँलाई गराउने गरेका छौं. कुनै पनि जिज्ञासाहरू रहेका छन् भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क हुने गर्न सक्नुहुन्छ. आफ्नो आफन्तको विषयमा, ग्रह दशा र भाग्यको विषयमा विशेष रूपमा जानकारी भने हामी तपाईँलाई गराउनेछौं. र कार्यक्रम ज्योतिष वास्तु नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूबाट, विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट तपाईँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा एकैसाथ कार्यक्रम ज्योतिष वास्तुलाई सुनिराख्नु भएको छ. हाम्रो एफएम 94 MHz भरतपुर चितनबाट, चितनको पहिलो सामुदायिक रेडियो चितवन 94.6 MHz रत्नगर 2 टाढीबाट, इच्छा कामना एफएम 102.4 MHz इच्छा कामना कुरिन्टार चितनबाट, रेडियो साहिनो 89.8 MHz चनौली चितनबाट, हाम्रो राप्ती एफएम 88.8 MHz भण्डारा चितनबाट, सामुदायिक रेडियो सुनवल 90.7 MHz सुनवल नवलपरासीबाट तपाईँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा एकैसाथ कार्यक्रम ज्योतिष वास्तुलाई सुनिराख्नु भएको छ. हाम्रो एफएम 94 MHz भरतपुर चितनबाट, चितनको पहिलो सामुदायिक रेडियो चितवन